वाजवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबोलाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़े इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजणो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुणाउणा, ओहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजणो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नू क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नू क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा रूह नाल लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, ओ लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणिया क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਮਾ ਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।

0: जद अकबर वाले तारीख क्यों ना उठाई।
1: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, वो बाद आप जी वाल लावांगा, आप जी दियां कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा
2: मठा जिहा चलदा व्यापार, परेशान ना हो मेरे यार, कारोबार फड़ेगा फिर रफ्तार, प्रवास रेडियो ते घर प्रचार। जी हाँ, अपने कारोबार नूं दुनिया भर च प्रचारण लई प्रवास रेडियो ते इश्तिहार दिओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो फोन नंबर 93 170 53 190।

0: घोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जा।

0: चतुर एक पेरा है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, प्रभाव रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनो दिलां ते दस्तक देण वाला, तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला, पाठ दे मसले लियाउण वाला, पंजाब दी सैर करवाउण वाला, हक सच दे ढोल वजाउण वाला, कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, भाई मथियां ते त्यूड़ियां ते पैणियां ही ने जदों खरियां खरियां सुनाईयां गईयां, कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, लबां ते हासे लियाउण वाला, तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला, पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार, मिठे बोलां नाल लै आप दे दिलां ते राज करन वाला,

का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

पसी ना छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना प्रेम दरोग पुराना पुराना पुराना है जैसे यमला अगला दीवाना हो रहा।

सो दोस्तो मैं माफी चाहना हाँ कि साड़ी गलबात बबी जी उन्हां नाल नहीं हो सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम करके मेरे वाल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं कोई आई उन्हां दी कॉल जिहड़ी सी उह कुछ सैकंड विच ही बंद हो जांदी सी ते उधर कोई टेक्निकल पर चलो एनी हाउ हो सकदा मैं अपनी गलबात चालू रखदा गाना भी कोई ना कोई एंटरटेनमेंट भी करता रहांगा अपना टाइम मैं पूरा करदा। मैं दोस्तों गलबात कर रहा सी भारतीयां दे पखंड पुणे ते एक्टर पुणे ते अपने समाज दा जिहड़ा दुखांत है जिहड़ा जिहड़ा रूप सानू पसंद नहीं उहदे उत्ते मेरी गलबात चल रही सी ते उहनू ही मैं थोड़ा जिहा अगे वधाउणा जिहड़े मेरे 15-20 मिनट रह गए ने। मैं अर्ज कर लिया सी कि साडा ना जिहड़ा मतलब कि पुलिस वालियां तो गल मेरे खत्म कीती सी कि देखो पुलिस साडी जिहड़ी पुलिस है असी कोई क्राइम करदे हां जां भारतीय नागरिक कोई भी कोई क्राइम करदा है ते उहदी सजा उहनू मिलनी चाहीदी है जुर्माना उहनू होना चाहीदा है पर साडे जिहड़े अधिकारी ने पुलिस अधिकारी वह बहुत गंदियां गालां मावां भैणां दियां कढ़दे ने बाजार दे विच लागों दी लेडीज भी लंघ रहियां हुंदियां ने बेशर्मी दे तरीके दे नाल इह पुलिस दा किहड़ा स्टाइल है डिसिपलिन दा किहड़ा तरीका है इह ते बदतमीजी दी इंतहा है कि असीं जिहदे कोई कानून भंग होया वह भैण या मां का की कसूर है उहदे विच जिहनूं इह गाला कढ रहा ते इहदे मोढ़े ते सकार लगे इहनूं शर्म आउणी चाहीदी है कढ़नी क्यों दिया गाला उहदे नाल सिद्धी गलबात जुर्माना करो जिहड़ा उहदा हुंदा वह कानूनी कार्रवाई करो जिहड़ी उहदे नाल हो रही है इह शर्म वाली गल है। नंबर दो दे उत्ते जिस तरह मैं हुण गल इस तरह कि साडा जिहड़ा सिस्टम है ना वह है ही इदां दा साहित दे केंद्र गवारां दे हत्थ विच राजनीति बदकारां दे हत्थ विच जख्म सीने तलवारां दे हत्थ विच सूई लंघ रहियां हुंदियां ने बेशर्मी दे तरीके दे नाल इह पुलिस दा किहड़ा स्टाइल है डिसिपलिन दा किहड़ा तरीका है इह ते बदतमीजी दी इंतहा है कि असी जिहदे कोई कानून भंग होया वह भैण या मां का की कसूर है उहदे विच जिहनूं इह गाला कढ रहा ते इहदे मोढ़े ते सकार लगे इहनूं शर्म आउणी चाहीदी है कढ़नी क्यों दिया गाला उहदे नाल सिद्धी गलबात जुर्माना करो जिहड़ा उहदा हुंदा वह कानूनी कार्रवाई करो जिहड़ी उहदे नाल हो रही है इह शर्म वाली गल है। नंबर दो दे उत्ते जिस तरह मैं हुण गल इस तरह कि साडा जिहड़ा सिस्टम है ना वह है ही इदां दा साहित दे केंद्र गवारां दे हत्थ विच राजनीति बदकारां दे हत्थ विच जख्म सीने तलवारां दे हत्थ विच सोने दा कम लोहारां दे हत्थ विच।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआर रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल

बरसा बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

बकड़क पसीना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना मैं जत यमला अगला दीवाना हो रहा।

और तेरे मन की जमुना सा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पगरूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप तो मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात।

आके अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतों,

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम
1: जे चले हो सो

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक गीत जड़ा ये मैं आप जी की नजर कर रही हूं विशेष करके।
0: थैंक यू जी।
1: जड़ा हुण मैं सुनाने लगी
0: हां जी।

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: अज पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी भैया तोहे प्यार दू।
1: वाह वाह राधना जी, आज जी मदर डेरी है तुहानू पता है
2: जी।
1: हां जी,
2: हां जी, बिल्कुल पता है।
1: दुनिया दी सोहणियां मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे
2: जी? बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
2: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
2: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
2: मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक है जी।
2: हां जी, उच्च सचिन छोटा जिया सीगा ते उदे उते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
2: ए गीत वैसे तो सारे मावा लई इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: खूबसूरत है, ये ते काफी
2: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा,
2: ते जेड़ा मैं आप जी ने सुनान लगी हूं किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
2: और चूंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन के सारे गीत याद ने।
1: तुहानू याद ने जी, मैं बिल्कुल
2: जी। ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्हें गीत याद रखने। मेरे ख्याल की 200-250 गीत मेनू मुंह जवानी बचपन की याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी
2: जी? हां जी, बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है। मेरी मां ने कहा, गुड्डी तेनू ए गीत याद है, तू ए गीत सुना।
1: अच्छा, तुहाडा नाम तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
2: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी
1: आ। तुहानू गुड्डी,
2: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो? आ जा हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नाम नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा कुड़ियां दे नाम
2: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनू गुड्डो कहंदे सी, प्यार नाल
1: गुड्डो। गुड्डी, हां जी हां जी। नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहिंदे सी?
2: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहिंदे हुंदे सी?
2: उदों कहिंदे सी, नी गुड्डो सुनन दई आ, उरे आई। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा,
2: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
2: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਚਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ,
2: ਮੈਂ ਚੁੱਪ।
1: ਹਾਂ,
2: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
2: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ओनली